आखला छू या विया का अविया ए मांगे आनो आई वाई ते हैं अचू या विया का नाम शेली हाना आई वाई छू सासू को होए होए ई छू साहू मखले लो फामा ओ खाला।